0: 2732393.
1: Log on to eventsmyteamof2.com.
2: क्यूनी ग्लोबल एडवाइजर इंक आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15 से $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनकी ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे ज्यादा है। आप घर के कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 4372643175। इट्स 4372643175।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: हम बेस्ट प्राइस के अंदर जो है मिनिमम कॉस्ट के अंदर बेस्ट से बेस्ट अकोमोडेशन कैसे दे सकते हैं. इसके लिए मैं जरूर अर्ज करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा अपने सुनने वालों को कि वो अपने अगले साल हज के लिए अभी से तैयारी करें, पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा लें, जिनका पासपोर्ट नहीं है वो रब्ता कर लें, गाइडलाइंस दे लें पूरी. और उसके साथ ही पाकिस्तानी पासपोर्ट, मैं अगेन इस पे बात पे जोर दे रहा हूँ, बहुत जरूरी है कि आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें. जिस तरह ये सिस्टम ऑन होगा आपका पासपोर्ट नंबर इनरोल कर दिया जाएगा. पैकेजेस जैसे ही तरतीब देंगे आपको इंशाल्लाह पैकेजेस की डिटेल्स दे दी जाएगी, उसके ऊपर आपकी च्वाइस है. एक बार सिस्टम इन हो जाए पैकेजेस के ऊपर निगोशिएशन या डिफरेंट ऑप्शंस वो हम बाद में तय करते रहेंगे. एक बार फिर मैं अर्ज करूंगा आप हमसे रब्ता कर लें 9052753555. मैं सोशल मीडिया पे और आपके इस आवाज की वसात से अपने सामईन को अपने हज के अहवाल, वहां का सफर, उसमें आप लोगों को साथ रखूंगा इंशाल्लाह और आकर के भी आपको उसकी अपडेट देता रहूंगा.
1: वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया करम भाई. और फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप यहीं होंगे, फिर आपसे मुलाकात करते हैं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. नंबर नोट करें 9052753555. बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट पहले दिन के इख्तिताम पर 4 विकेट पर 301 रन बनाए हैं. 85 ओवर्स का मैच हुआ. मुशफिकुर रहीम 48 और लिटन दास 8 रन पर नॉट आउट हैं. कप्तान नजमुल हसन शंतो 101, मोमिन उल हक 91, महमूद हसन जॉय 8 और शादमान इस्लाम 13 रन बनाकर आउट हुए. और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल ने टेस्ट डेब्यू किया है और ग्रीन विकेट कहा जा रहा था लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ विकेट नहीं नज़र आई और लगता ऐसा ही है कि ये हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है. अगर पाकिस्तान ने कल जल्दी विकेट ना लिए तो बांग्लादेश का पल्ला इसमें भारी नज़र आएगा. बाबर आजम इंजरी के बायस इस मैच में पाकिस्तान टीम को दस्तयाब नहीं है.

0: involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में। Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर। चरगा, लाहौरी fish, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम चॉप्स, अफगानी टिक्का, निहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088। It's 905-268-0088।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स अब मिसिसागा के बाद स्कारब्रो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन 416-757-9999। दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस न रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन
3: 9522567। مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں آزان مغرب۔

0: وسلم.
1: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: SS Har Auto Service, 921 Pape Avenue, southeast corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf saab ya Nabeel Ashraf saab se raabta kijiye. 416-466-8782 416-466-8782 Toronto mein 23 saal se 24/7 khulne wali wahid shop SSR Auto Service 921 Pape Avenue. क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है स्पेशल ऑफर विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ याद आएगी इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए सम कंडीशंस में अप्लाई मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200 It's 416-206-3200.
3: Barbecue Tonight ki dusri location 5165 Dixie Road, Dixie aur Emco ka intersection Mississauga mein. 200 se zyada logon ki gunjayish, badi parties bhi aap arrange kar sakte hain. Barbecue items, Bihari kebab, Sikh kebab, kadahi, biryani, taza naan aur beshumar dishes. Zaika wahi aur khoobsurat second location. Parties ki booking ya malumat ke liye call kijiye 905-282-9868. Barbecue Tonight ki second location 5165 Dixie Road, Dixie aur Emco ka intersection Mississauga mein 905-282-9868.
4: Lisa ki yaad nahi aayi tujhe Jassi. Jassi ko chhodiye kyunki Lisa's Cosmetics laaye hain Spring Warehouse sale khaas aapke liye. Perfume, skin care, makeup, hair care, designer sunglasses, chocolates aur bhi bahut kuch with mega savings up to 80% off. Durandar deals on all your favorite world famous brands jaise Tom Ford, Versace, Armani, Azzaro and more. आपको आना है 135 Commerce Valley Drive, East Markham, Highway 404 और 407 के बेहद करीब and close to 401. सेल चलेगी April 18th से May 10th तक, perfect for Mother's Day gifting. तो ज़्यादा swag at कम price, सिर्फ Lisa's Warehouse Sale पर, visit lisascosmetics.com.